0: locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: मैं थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कनाडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजुर्बा है कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करते हैं जिस दे वो सचमुच ही हकदार हैं थोड़ा।

0: हाँ, क्या बात है जी। जैसी बारदा लिखा होया और गाया होया खूबसूरत गीत तुसी सुनया। की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? जुड़े हुए रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरां दे नाल। ठीक ठाक हो? चढ़दी कला दे विचों गल्लां बातां चल रही जी पंजाबी लहरां दे उपर। सो खबरां दा भी समा हो गया। सो उम्मीद करते हैं तुसी ठीक ठाक होंगे, अज दी खूबसूरत शाम नूं इंजॉय कर रहे होंगे। सो अजे मैं लगता कि कुछ क आई थिंक समय दे विच थोड़े नाल राबता हुण जुड़ जाणा साडा प्रोफेसर सुदीप सिंह ढिल्लों नाल, ते फिर खबरां दे नाल जुड़ांगे।
1: Your call forwarding always has been deactivated successfully. Thank

किताब जो ओए बल्ले बल्ले क्या बात है, क्या लिखता यार 905-673-3333 तुसी जुड़े रहना रेडियो प्रोग्राम उड़ान लेके जुड़ांगे 9 तो 10 ते स्टे ट्यून्ड AM 530 सुपर हिट फ्रीक्वेंसी दे नाल। मैं थोड़ा अपना मेजबान प्रभ संधू

वाला कोई भी सामान, चाहे वो ग्रोसरी है, चाहे वो कोई बर्तन है, चाहे कोई औजार है, चाहे गुरु साहिबान नाल संबंधित कोई फोटोग्राफ चाहिदी है, चाहे कोई हिंदू धर्म नाल संबंधित किसी देवी देवते की फोटोग्राफ चाहिदी है या पूजा समगरी चाहिदी है, घर दे विच तुसी पंजाबी थीम उसारना है, कोई विआह शादी है, कोई फंक्शन है, तो तुहानू पंजाबी कल्चर दे नाल रिलेटेड हर एक चीज़ तुहानू इत्थों मिल जाएगी। घर दे विच वरती जाण वाली छोटी मोटी कोई दवाई जो फस्ट एड दे तौर ते असी अक्सर पिंडां दे विच घरां च रखदे सी, हर एक दवाई तुहानू इत्थों मिल सकदी है। ईनो, इसबगोल, जन्म कुट्टी, साफी, चंडू बाम, बदाम रोगन, अमृत तारा, कायम चूरन, एलोवीरा, जो भी बरनौल, इचगार्ड, मूव, हर एक चीज तुहानू इत्थों मिल सकदी है। फोन नंबर नोट करो 905-230-4800 905-230-4800। ब्रम्पटन कैश एंड कैरी पंजाबियों के कॉस्को के नाम नाल जाणिया जांदा, 60,000 स्क्वेयर फुट के विच फैलिया होया विशाल स्टोर। सो गलबात अज नहीं, फोन मैं आ नहीं रहा कोई, अज दो तीन फोन ही आए हैं दोस्तों मित्रों, या तो कोई मुश्किल आईया ही नहीं तो या उन्होंने मुश्किल चुटकी दे विच ही हल कर लिया, तो उन्होंने लगता ही नहीं है कि गलबात शेयर की जा सकती है, क्योंकि अजक जे दोस्त मित्र मुंडे आ रहे ना, वो तो चलो उधरों पढ़ लिख के स्टडी वीजे ते आ रहे, उन्होंने तो मुश्किल नहीं आदियाँ। सो जे पहला दोस्त मित्र भैन भरा आए ना, जेडे अपने बच्चों के आने तो बाद आए, जेडे इत जिन्होंने अपने बच्चों के सुपन साकार हों देखने दे जेडे आए, या अपने बच्चों दे बच्चों की हैल्प के वास्ते जेडे इतने आए, जेड़े अजकल सीनियर्स क्लब दे विच सारे दोस्त मित्र मैनू बहुत सारे मिलते हैं, तो मैं गलबात शुरू भी उतों ही की सी कि अज साडे एक दोस्त ने जो फोन आया तो उहदी गलबात का लहजा थोड़ा जिहा इस तरह का सी, तो मैं क्या चलो इस गलबात नूं आपां अज विषय के तौर पर डिस्कस ही कर लांगे। सो तुसी जरूर शेयर करो जे दोस्तों मित्रां भैन भरावां नूं कोई इस तरह की गलबात इत्थे कोई मुश्किल आई, वह किस तरह की मुश्किल आई, जे आई भी तो उन्होंने किस तरह का उन्हों का सल्यूशन लभ्या। सो ये गलबात जड़ियाँ चलदिया रहनगियाँ, तो नाल नाल आपां तुहानू कोई ना कोई गीत संगीत का तड़का भी लाउंदे रहांगे, तो गलबात नूं अगे कंटिन्यू फिर करांगे। एक प्यारा जिहा गीत तुहाडे नाल होर शेयर करदा मैं, थोड़ा जिहा लाइनां उहदियां

0: लो लखविंदर वडाली, बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत गायक, बड़ा सुरीला गायक, क्योंकि एदे बाप और एदे चाचा जी पूरन चंद वडाली ते प्यारे चंद वडाली बहुत ही वधिया सुरीले गायक होए ने अमृतसर दे। क्योंकि मैं भी अमृतसर दा रहन वाला ते मैं लखविंदर वडाली भी उत्थे जदों विचारा अजे स्ट्रगल करदा हुंदा सी उदों तो असी इस नूं जानदे आ। सो साडे रेडियो प्रोग्राम दे इस वेले दे जिहड़े स्पॉन्सर्ड ने जीओ जी अमायरा अकैडमी ब्यूटी दी दुनिया दे विच जाणिया पहचाणिया नाम बीबियां भैणां ने, कोई ब्यूटी दा ट्रीटमेंट लैणा होए जां इस फील्ड दे विच अपना कैरियर बनाउण दे लई कोई डिप्लोमा करना होवे, हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल अस्थैटिक डिप्लोमा या होर कोई एडवांस डिप्लोमा करना होए तां तुसीं इनफोरमेशन लै सकदे हो। 905-399-1810 नंबर है, 9035-3996-110। प्रॉपर्टी कोई लैनी है, प्रॉपर्टी कोई वेचनी है, रीमैक्स गोल्ड दे नाल कम करदे बहुत तजर्बेकार रियल एस्टेट दे विच लंबा एक्सपीरियंस रखण वाले इंदर अरोड़ा ते रमन कथूरिया दे नाल फोन कर सकदे हो। 416-525-7400 416-525-7400 नंबर है। तुहाडी मॉर्गेज दे बारे, डाउन पेमेंट दे बारे, होर जो डाक्यूमेंटेशन दी जरूरत हुंदी है हर एक चीज दी बड़ी तुहाडे नाल डिटेल दे विच डिस्कस करके तुहानू पूरी वधिया गाइड करनगे। फोन नंबर 416-525-7400 416-525-7400। घर दे विच कोई पेंट दा काम करवाउणा है, कोई तुहाडा कमर्शियल यूनिट है, तुहाडे घर है कोई, या घर दे विच कोई डैक नूं, कोई फेंस नूं, किचन दी कैबिनेट नूं, किचन दे कैबिनेट दे विच जिहड़े रैक्स हुंदे ने, ड्रॉज हुंदे ने, कपबोर्ड हुंदी ने, कोई उन्हां नूं पेंट करवाउणा, रंग रोगन करवाउणा है, या डस्टलेस्ट पॉपकॉर्न सीलिंग रिमूवल दी टेक्नीक वी इहनां कोल है। तुसीं छत दे उपर कोई तुहाडे बबल्स जे पए ने, तुसीं उन्हां दा कोई चेंज करवाउणा चाहुंदे हो, उत्ते कोई होर तरहां दा कोई सैटिंग करवाउणी है तां ओह रिमूव करन दे लई इहनां कोल टेक्नीक है। बिलकुल घट्टा मिट्टी, कोई डस्ट नहीं पएगी। सो किसे किस्म दा कोई पेंट दा काम करवाउणा होए, गिल पेंटिंग इन्हां दी फर्म दा नां, और जैकीरत जैकी उस ओनर्स दा नाम है जिस नूं तुसीं कॉन्टैक्ट कर सकदे हो। फोन नंबर 416-473-4458, 416-473-4258, गिल पेंट्स। सो गल्लां बातां असीं कर रहे सी कि साडे दोस्तां मित्रां नूं जे कोई मुश्किलां आईयां जदों नवें नवें आए भाषा नूं लै के। चलो खैर, गल्लां बातां आपां होर किसे पासे नूं चला लैंदे आ। जे इस करके किसे नूं नहीं लगदा कि इस तरह की मुश्किल किसे नूं आई नहीं, या जे किसे नूं आई है ते तुसीं शेयर नहीं करना चाहुंदे, तां आपां गल्लबात दो होर सिलसिला कोई ना कोई शुरू कर लें। गर्मी देखो बहुत ऐ, हफ्ता गर्मी पैनी है, गर्मी दे तुसीं बहजा तुहाडी करवा देनी है, जिदा सर्दियां दे विच वी इस वार बहजा करवाई सी ना। सो किसे दे दिमाग चो ए कि बहजा शब्द कित्थों आया, कोई ध्यान च है किसे दे, कोई दिमाग च किसे दे होवे। आपां कई वारी कह दिंदे भाई बहजा करवाती यार, उन्हें बहजा करवाती है, इन्नी कमाल की पेशकारी के बहजा करवाती। इहनूं असीं नैगेटिव सेंस दे विच वी कई वारी वरत लैंदे आ, बहजा करवा दिंदे आ। सो किसे दोस्त मित्र नूं जानकारी होए तां जरूर मेरे नाल शेयर करो कि बहजा करवाती, बहजा करवाती, ए लफ्ज़ नूं असीं किस प्रसंग दे विच इस्तेमाल करदे हां। फोन नंबर 647-377-5353 647-367-5353। ओह कहिंदे ने एक वारी पंजवीं मंजिल दी बिल्डिंग दे उपर ना एक इंजीनियर खड़ा सी, वह पंजवीं मंजिल ते खड़ा सी, उहनूं कोई कम पिया थले, एक मजदूर खड़ा सी थले, उहनूं उहने आवाजां वूजां मारियां, कोई आवाज ना सुनी, ते उहने ना मजदूर तो इंजीनियर ने की कीता, 100 दा नोट कढ के ना थले सुट दिता। उहने मजदूर ने की कीता, चुक करके 100 दा नोट चुकिया, खब्बे सज्जे वेख्या ते चुप करके जेब च पा लिया। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੇਖੂਗਾ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਤੋਂ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਕੀਤਾ, 500 ਦਾ ਨੋਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਟੋਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ। लेकिन जदों कोई माड़ी जी दुख तकलीफ प्रॉब्लम सानू पा देवे ना ते फिर मिंटो मिंटी भजे जाने असी सवेरे सवेरे नहा धो के भाई मंदिर चलीए गुरुद्वारे चलीए परमात्मा तो माफी मंगीए पता नहीं की गलती होगी साडे तो। सो साडे एक कॉलर ने सत श्रीकाल जी चरणदीप जी की हाल चाल है।
1: हेलो जी सत श्रीकाल जी
0: की हाल है।
1: मैं गाना सुनना चाहना एक बुलबुल।
0: बुलबुल दा टाइम नहीं है हुण कल सुनावांगे इस वेले टाइम साडे कोल रह गए 4-5 मिंट बाकी रह गए।
1: चार पांच गद्दे बता लो
0: एक गाना ला लो। चलो कोई नहीं हुणे लाउणे। सो दोस्तों 647-367-5353 साडे स्टूडियो दा नंबर है ते मैं गलबात कर रहा सी इंजीनियर वाली ते उस मजदूर वाली के जदों तां उहने नोट सुट्टी गया उहने ध्यान नहीं कीता जदों उहने छोटा जिहा वट्टा सुट्टिया उहदे सिर च वज्जिया ते उदों मूंह तां चक लिया भाई कित्थों आया। सो असीं वी साडी वी इही सोच इदां दी बन गई होई है कि परमात्मा दीआं नेमतां दे असीं शुक्रगुजार नहीं हुंदे उह चुप चपीते लई जांदे आ ते लेकिन जदों कोई मुश्किल कोई तकलीफ आउंदी है ना ते फिर हाथ जोड़ के खड़े हो जाने जाके मंदिर गुरुद्वारे च परमात्मा हुण तेरा ही आसरा है उदों आसरा असीं भुल जाने आ जदों उह सानूं देई जांदा नेमता देई जांदा। हाँ जी सत श्रीकाल जी। नहीं मैं समझिया नहीं दोबारा रिपीट करियो। अच्छा एस मतलब ओ बह जा नहीं है तो ओ ही है बह जा सत श्रीकाल जी।
1: ਕੈਨੇਡਾ
0: ਦੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ।
2: ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ
0: ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਸਾਡਾ ਨਾ 1 December ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ।
2: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਕੀ
0: ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
2: ਕਿਤੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੈਲ ਕੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਤਲਬ
0: ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ।
2: ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ
0: ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਆਪਣੀ
3: ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਜਿੱਦਾਂ
0: ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ
3: ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਕਰਾਤੀ ਜਿਹੜੇ
0: ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਹਿਜਾ ਉਹਨੇ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸਨੈਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਹੁਸਨੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ 10:59 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ
4: ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ
0: ਜੀ
4: ਔਰ ਬਸ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਹਿਰਾਸਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਲਬਾਤ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹੋ

हाँ, क्या बात है। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, सुपर वीजा जां किसी भी तरह की इंश्योरेंस का तुहानू क्वेश्चन हैगा तां तुसीं हरजीत सिंह जंजुआ जी होणा ना 647-835-5594 दे उत्ते संपर्क कर सकते हो। जां फिर तुसीं इंश्योरेंस का लाइसेंस लैणा ऑलरेडी लिया होया या काम नहीं कर रहे, है ना, पार करके लाइसेंस रखिया, पता नहीं लगता कित्थों शुरू करिए, तां तुसीं एक बारी साडी ब्रोकरेज हॉर्नबिल इंश्योरेंस ब्रोकर नाल संपर्क कर सकते हो, मेरे नाल संपर्क कर सकते हो 647-237-3123। तुसीं हॉर्नबिल इंश्योरेंस ब्रोकर दा ऑफिस हैगा जी डिक्सी ते स्टील दे एरिया 215 विलकिनसर रोड दे उत्ते। सो रमनदीप सैनी जां हॉर्नबिल इंश्योरेंस नाल जाने कि मेरे नाल तुसीं संपर्क कर सकते हो 647-237-3123 दे उत्ते। पी एंड जे स्प्रिंग दे विच बिशिंग अलाइनमेंट किंग पिंग ग्रैवल ते जे ट्रकां दा कोई भी काम है तां तुसीं जे एंड गैरी भाजी नाल संपर्क कर सकते हो 905-459-5533 दे उत्ते। ते जे एंड गैरी भाजी होणी कहिंदे ने 5330 ब्रैडको बुलेवार्ड मिसिसागा नियर डिक्सी ते मैथेसन दे उत्ते स्थित ने। ते एक बार कैंसे कल्चर सेंटर दा दोबारा मैसेज दे दिए सी ए सेंटर दे विच जुलाई 4 नूं। हाँ जी, जुलाई 4 नूं कहिंदा साडा कबड्डी कप होना हुण जा रहा गोरा तों। आ भाजी ते राणा ब्रियान होणा ना 416-230-4000 दे उत्ते कोई भी इस रिलेटिड क्वेश्चन हैगा तां तुसीं संपर्क कर सकते हो। उत्थे कहिंदे संगत लई लंगर ते छबील दा प्रबंध पूरा हो जाएगा। जगतार रौके भाजी नाल पलंबिंग दा कोई भी काम हैगा, ड्रेन बंद हैगा जां होर कोई टुटी टॉयलेट बदलनी है, तो जवाबदार रॉयके होना 416-820-93-46-9346 के उत्ते संपर्क किया जा सकता।

सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल कभू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों मानते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत चढ़ती कला वाली सवेर के खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके।

0: Longer Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milne ja raha hu. Soch raha si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiya chahidiya ne. Nazara restaurant leke jao unna nu. Private booths ne, full privacy mildi hai. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadhiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी होए कॉल करो 9054512600 9054512600

0: Brampton. Major intersection Steeles and Kennedy 90545-12600.
1: मेरी पहली पसंद.
2: I love it.
3: मैं तो सवेरे सुने बिना रह ही नहीं सकती.
1: हम सबकी पसंद
4: रेडियो आवाज.
1: एवरी मॉर्निंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 एंड सैटरडे 10 to 1 ऑन AM 530. नॉन स्टॉप कॉल्स, नॉन स्टॉप टॉक्स. प्रमोट योर बिजनेस विद अस. कॉन्टैक्ट 416-518-3200.
5: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल होया पे. कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही.
6: निर्बल बाबे ने कहा से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं.
7: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ली पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया.
8: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता.
9: रेडियो आवाज,
10: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक, एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक, प्राइम टाइम ते. वधेरे जानकारी लई तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200.
11: घर नूं पेंट कराउणा हुंदा है, कन्फ्यूज हो जांदे हो. बहुत सारे पेंटर्स ते पेंटिंग कंपनी दे नंबर, पर तुसीं रियलिटी पेंटिंग नूं क्यों नहीं चुनोगे? फायर स्टेशन, 5-स्टार होटल्स, बिल्डर दे कस्टम कार्स या सरकारी इमारतां नूं पेंट कर चुके हन, उत्थे तुहाडे घर नूं 24 घंटिआं दे अंदर अंदर पेंट कर दिंदे हन. इन्हां दा रेट इन्हां दी क्वालिटी नूं कोई भी मैच नहीं कर सकदा. 7 साल दे कीते हुए काम दी गारंटी होवेगी. फ्री एस्टीमेट लई सुखमन नूं कॉल कर सकदे हो 416-816-8401, 416-816-8401.
12: रुपिंदर गरेवाल लॉ ऑफिस, रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन, विल बनाउन लई फैमिली लॉ जां फिर पावर ऑफ अटॉर्नी, ऑल सर्विसेज अंडर वन रूफ. कम्युनिटी दा जानिया पहचानिया नाम रुपिंदर गरेवाल, बैरिस्टर, सॉलिसिटर एंड नोटरी पब्लिक, लोकेटेड एट चिंक्यूजी एंड बवेट. फॉर ऑल सर्विसेज

0: 905-497-1211, 905-497-1211।
1: दो व्याह किते इंडिया च, एको ही बाजार विच सब कुछ हो गया। इत्थे कैनेडा विच एक व्याह किता, मैं ता थक गई हां।
2: साफा टर्बन, टर्बन वेडिंग एक्सेसरी, सफारी सूट्स, कुर्ता, कोट, शेरवानी, कलगी, कस्टम करपाना तो लेके कस्टम जुतियां तक तैयार कर देंगे। हिंदू, सिख या मुस्लिम किसी भी धर्म दे रिवाज दे मुताबिक व्याह कर रहे हो, पगड़ियां ते साफियां दे वास्ते। साफा टर्बन, 158 कैंडी रोड, ब्रैम्पटन, 437-655-3040, 437-655-3040।
3: याद है मैनू जो तो मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट होया सी, किन्नी परेशान हो गई सी मैं। इंश्योरेंस नाल डील करना, गड्डी पेंट कराना, किन्ने झंझट। थैंक्स कर दिया मैं स्पीडेक्स ऑटो कलिजन वालियां दा, जिन्ना ने मेरी इंश्योरेंस नाल खुद डील किया, रेंटल कार भी दित्ती, ते मेरी कार नू बिल्कुल नवी वर्गी बना दिता। ते तुसी भी पहुंचो स्पीडेक्स ऑटो कलिजन, 181 रदरफोर्ड रोड साउथ, यूनिट 11, ते या कॉल करो 416-277-9221, 416-277-9221।
4: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
5: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो,
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1, रेडियो आवाज।
8: मम्मी मम्मी भूख लगी है, बर्गर खाना है।
0: You are listening to your favorite radio show, Radio Awaz, The Voice, Zindabad, Zindabad. For advertising, please call 416-518-3200.

0: यार इना इंश्योरेंस ने तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा।
1: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनी बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने।
2: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे तुहाडे कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता तुहानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे।
1: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 647-300-3100 647-300-3100
2: या मिलो 70 डेल्टा पार्क बुलेवार्ड यूनिट 11 ब्रैम्पटन।
3: आप पंजाबी आ गए
4: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
5: डॉक्टर कुमार लगे हुए नशियां तो मुक्ति दवाने वास्ते शराब अफीम पोस्त डोडियां दे नशियां तो दूर कर देंदे हैं डॉक्टर कुमार। लेडीज़ां दे मर्दां दे गुप्त रोगां दा इलाज डॉक्टर कुमार। बुजुर्गां दे मोढे गोडे दुखदे आ भाई डॉक्टर कुमार। हर्बल वैगरा भी तुहानू वेचदे आ डॉक्टर कुमार। हर तरह के इलाज वास्ते डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ग्रेटर पंजाब प्लाजा माल्टन गुरु घर दे कोल डॉक्टर कुमार 416-425-0138 ते कॉल

0: health insurance specialist from Top Choice Insurance Agency.
1: Mama, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
2: और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी।
3: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
4: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 905-458-6808।
5: करता आपा एड़ा वड़ा एना सोना ले लिया, हुन अप्लायंसेस भी हाई एंड ही लेने हैं।
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस है ना, फ्रिज, स्टोव, डिशवॉशर, वॉशर एंड ड्रायर, एलईडी टीवी, सब एथो ही लवांगे। एना तो वधिया प्राइसेस पूरे ब्रैम्पटन की टोरंटो च नहीं मिलनिया। कोई भी अप्लायंसेस खरीदो, पेमेंट भी 6 महीने च करनी है, वो भी बिना किसी ब्याज दे, होर ते होर डिलीवरी भी फ्री करेंगे। कॉल ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 905-450-2828-905-450 2828।
7: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी, हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन

Brampton या फिर तीसरी लोकेशन 9985 MacWin Drive Unit 9 Brampton Indian Fruitland ते हुन चौथी नवी लोकेशन 1465 Mayfield Road Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े Indian Fruitland 9054569900

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: मित्रां दे जंक्शन ते।
5: ओ केड़े जंक्शन ते?
6: इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते।
4: रात लगियां महफलां रे।
6: भाई महफलां ते रोज ही लगदियां ने। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते आओ, ताजा स्वादला खाओ ते 100% दी कैपेसिटी वाले शानदार बैंकुएट हॉल विच अपनियां खुशियां दे जश्न मनाओ। इक्का जंक्शन ब्रैम्पटन करदे ने केटरिंग बिग और स्मॉल विद लाइव फूड ट्रक 11 AM to 6 PM। ऑल ड्रिंक्स 50% ऑफ। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन ते कॉल करो 647-449-4040। टिक्का जंक्शन ब्रैम्पटन।
7: एक लाइफ है जिसे लव है,
8: ये कहते मुझसे सब है,
9: अरे एक घर है जिसका ड्रीम है।

0: AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: Wholesale club vich kimta kat ho riya han.
2: Allah naalo vi kat.
1: Eh dekho, 13.6 kilo sunspun straight cut fries. Sirf $33.99 vich.
2: Eh ta hor vi kat hai.
1: Sade basement de wifi signal to vi kat.
2: Oye tu kithe ja rahi hai?
1: Apne business layi paise bachaun.
3: Tuhade business layi paise bachauna sada business hai. Is layi assi kai items diyan kimta kat kar rahe han.
4: Pe koi fees nahi. Hor jankari layi wholesaleclub.ca vekho.
5: Wholesale club. Whole lot of value.
6: 32-55-80
1: होलसेल क्लब विच कीमता कट हो रही हैं
2: अल्लाह नालों में कट
1: ऐ देखो 13.6 किलो सनस्पन स्ट्रेट कट फ्राइज सिर्फ $33.99 विच
2: ये तो होर भी कट है
1: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट
2: ओए तू किथे जा रही है
1: अपने बिजनेस लाई पैसे बचाओ
3: तुहाडे बिजनेस लाई पैसे बचाना साडा बिजनेस है इस लई असी कई आइटम्स दी कीमता कट कर रहे हां
4: कोई फीस नहीं होर जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो
5: wholesale club whole lot of value.
0: The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने अते तजरबेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
1: कोई Case Refuse हो गया या Appeal ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही Call करो, 416-456-6161.
2: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई.
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है.

0: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਜਾਂ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜੋ 1200 ਡੈਰੀ ਰੋਡ ਈਸਟ ਯੂਨਿਟ 22 ਮਿਸਿਸਾਗਾ 416-804-2015 416-804-2015 Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Suvere 10 to sham 7 baje tak on dine-in and take-outs. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana patura. Wednesday, lajwab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian. This sariya hi locations stay. Dining, take-out and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
1: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
2: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
3: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानु सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-453-3381 416-457-3381 ते
1: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
4: हेलो AM 530 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
5: टुडे विच लाइव गलबात कर लई हुने कॉल करो 905-564-6444
4: 905-564-6444
5: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो AM 530 तो

0: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
1: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
2: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
1: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
2: तुम्हें ये सब कैसे पता?
1: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
2: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
1: सेव ऑन एनर्जी .ca/EAP